सुप्रभात अम्बाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 30 जून 2026 मंगलवार, ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:24 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:29 पर।

अनंत तो हो जाना है, लेकिन ये नहीं जानता कि अनंत के आगे बेअनंत है। अनंत होने से पहले बेअनंत को जान लो तो फिर अगले वाले अनंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअनंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो दस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाए अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना? बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शाइनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसे आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे?
1: जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी देखिए, सबसे जरूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं, इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। देखिए, एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता, उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे बचना चाहिए, बचना चाहिए,
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बच्चों को ज्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें भी झिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए, और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटें या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारे। आजकल बच्चे जो हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं जब हम छोटे, जब वो होते हैं, अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही बताया है कि बच्चे को कभी डांटिए नहीं और किसी के सामने ना डांटिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद बच्चा कोई भी जब किसी के सामने आप उसको डांटते हैं तो कोई भी स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है, इसलिए बच्चे के साथ रहिए दोस्त बनकर।
1: और एक बात और कहना चाहेंगे, उन्हीं घरों के बच्चे कम आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स में आपस में अनबन होती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के
0: साथ। माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बहुत जरूरी है। बहरहाल काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, रुकना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है।
0: जरूरत है एक घर।

0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी, बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, जैसे शब्द का हमने इस्तेमाल किया कि बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, तभी जाके आपका बच्चा तरक्की कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: जी बिल्कुल सही,
0: ये बहुत जरूरी है।
1: और अब हम आगे चलेंगे और लहसुन की बात करेंगे। देखिए, लहसुन को कच्चा खाने से शरीर में के कई लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज लहसुन की 2 या 3 कच्ची तुरियां खाली पेट खाने से खून में बड़ी चर्बी है जो वो पतली हो जाती है।
0: आमतौर पे जो जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करें तो आपके वो जो खून है उसमें पतलापन आएगा और आपकी नाड़ियों में वो खून ठीक ढंग से चलता रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इससे खून भी साफ होता है। दमा, खून में अगर आपके शुगर है, मानसिक तनाव है, सिर दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, बदहजमी जैसे कई रोग ठीक हो जाते हैं अगर हम डेली रूटीन में कच्ची तुरी खाते हैं 2 या 3।
0: जी, हालांकि मैंने सुना था कि सोनू जी की इसको भून के अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही खाई। लेकिन देखिए, भूनकर दाल या सब्जी में
0: ये
1: डालने
0: बात
1: से
0: मैंने
1: इसके
0: सही खाई नहीं बल्कि सही कही। जी
1: देखिए, लहसुन को तड़के में आप भूनकर दाल और सब्जी में डालने से देखिए इसकी खुशबू और तीखापन तो खत्म हो जाता है। और आपने सही कहा कि जो दाल सब्जी है वो तो स्वाद बन जाती है, पर इसके जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
0: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयाँ बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
1: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण है वो बरकरार रहेंगे।
0: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
1: देखिए, आप जैम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं। टेस्ट दुगना हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने और ये आपको फायदा दे सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।

0: तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में।
1: बहुत जरूरी है कि आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है लहसुन, और ये इसकी तासीर गर्म रहती है तो इसलिए शरीर में गर्माहट भी रहती है और बहुत फायदे हैं जी, और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
2: जी आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
1: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं।
2: और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
1: हाँ जी,
2: देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबलस्पून, किशमिश 1 टेबलस्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नरम होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
1: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे, तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, जरूर खिलाएंगे,
1: एक साथ हम खाएंगे। बिल्कुल, ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था।
2: जी जी, आपका स्वाद अगली बार चेंज हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना।
1: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी, गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज़ देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूं एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। पॉजिटिव स्टोरीज की श्रृंखला में लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है आदतें। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। व्यक्ति आदतों का गुलाम है। याद रखिए, आदतों से ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है और फिर स्वभाव से व्यक्तित्व और फिर व्यक्तित्व से व्यक्ति का जीवन बनता है। इसलिए जीवन को सुधारना हो तो आदतों को सुधारना होगा। एक बार कोई बुरी आदत पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल से छूटती है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति नदी किनारे अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी उसे नदी में एक कंबल बहता हुआ दिखाई दिया। उसने आव देखा ना ताव, कंबल को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी और कंबल को पकड़ लिया। थोड़ी देर में उसे लगा कि कंबल ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। वह बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। किनारे बैठे दोस्तों ने कहा, छोड़ दे कंबल को। वह चिल्लाकर बोला, पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब इस कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ पर यह मुझे नहीं छोड़ रहा है। वो कंबल वास्तव में कंबल नहीं, भालू था जो ऊपर से देखने पर कंबल जैसा प्रतीत हो रहा था। उस भालू ने उसे जकड़ लिया था। ऐसे ही हमारी बुरी आदतें होती हैं। पहले हम उनको पकड़ते हैं, फिर वो हमको पकड़ लेती हैं और अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। हम चाहकर भी उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए हमें लंबा अभ्यास करना पड़ता है, वहीं अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें कम अभ्यास करना होता है। इसलिए अच्छा होगी जब आदत ही बनानी हो तो अच्छी आदत ही अपनाई जाए। अच्छी आदतों से हमारा व्यक्तित्व बन जाता है और हमारी पहचान भी, और साथ में ही हम बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाते हैं। आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा और मिलेंगे अगली पॉजिटिव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपने आसपास खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।
2: तो छु बोजन FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से सितारों ने तब ये सोचा था, ये घनेरे बादल हैं, कभी तो मिट जाएंगे, हमारी भी तकदीर बदल जाएगी, कभी हम भी जगमगाएंगे, पुर अमन सफर जारी था, दिल में गुमा कुछ और था, ईमान उनका इस कदर बह जाएगा, दिल को कब ये एहसास था, अभी अभी तो नजरें मिली थी उनसे, अभी तो समझे थे दिल की बात, आने लगे थे यूं ही करीब, आने लगे थे यूं ही करीब, पर फासलों ने फिर से रास्ते रोके, फासलों ने फिर से रास्ते रोके, अब्र की सिहाई से चांद ने जब देखा था, मसरत से

ख्वाबों की सरहदें नहीं होती, रोज चिलक जाता हूं मैं उस पार अपने यार से मिलने, बातें करता हूं हां देर शाम तक बातें करता हूं, पुष्पहार पहनाता हूं, फूलों की बारिश मौसम खिजा अक्सर मेरे गीतों को गुनगुनाना, अभी भी तुम्हारी फितरत में शामिल है। अपने यार को मीना बाजार की सैर भी कराता हूं, तुम्हारी नाजुक कलाइयों में कंगन पहनाता हूं और इन बादामी आंखों में कचरा लगाता हूं। बंद आंखों के ख्वाबों की सरहदें नहीं होती, रोज चला जाता हूं मैं उस पार अपने यार से मिलने, तुम हुस्न की हो मिसाल, हो पूनम का चांद, जिंदगियों की हो सहर, हो ढलती शामों की मखमली नींद।

परियां फैलाती हैं मन का आंचल, भर देती हैं खुशियों से दामन, अपने साथ कहीं दूर तक ले जाती हैं गगन के उस पार, अपनी मुस्कुराती दुनिया में जहां फरिश्ते राहों में सजदा करते हैं, जहां यकायक फूलों की बारिश होती है, जहां चांद सितारे हमारे पांव छूने में गुरेज नहीं करते हैं, जहां रूह रक्स करते हैं और जिस्म प्यार का इजहार।

कहाँ हैं दूर के मुसाफिर, वो चलते हैं अपनी परछाई के हमरा, अपने साए के संग संग, और खोजते हैं अपनी खोई हुई पहचान को। ये दुनिया जंगल की तरह है, जहां भीड़ है अनसुनी रूहों की, अजली लाशों की। इस जारी सफर में हम अपने रिश्तों की अहमियत को भूल चुके हैं और भूलते जा रहे हैं इंसानियत का सबक।

दोस्तों, आज की ये महफिल बस यहीं तक। चाहेंगे आपसे इजाजत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: पेशा कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 11 प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
2: पहलू और गीत का एक और अंक लेकर मैं हूं आपके साथ किरणी। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम का पहलू है जिंदगी और इसी पर आधारित आप नगमे भी सुनेंगे। बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं तुझे ऐ जिंदगी, हम दूर से पहचान लेते हैं।

0: इसके साथ ही आज के पहलू और गीत का अंक यही समाप्त होता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहलू और गीत एपिसोड 11, प्रस्तुत किया RJ किरनी ने, एडिटिंग दीपक कश्यप, रिकॉर्डिंग व निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: पेश है एक खास कार्यक्रम मोहम्मद रफी पर, प्रस्तुत करेंगे रमेश मराठा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बीनूरी पिरोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये आवाज सुन रहे हैं आप, जरा पहचानिए तो, ये आवाज आज तलक आपके कानों में रस घोलती आ रही है, आपके दिलों को करार, रूहों को सुकून पहुंचाती आ रही है। ये सदाबहार आवाज किसी तर्फ तारीफ की मोहताज नहीं है, ये आवाज अपनी मिसाल आप

मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को गांव सुल्तान सिंह कोटला अमृतसर में हुआ है। दोस्तों, रफी का आगाज तब हुआ जब के.एल. सहगल, मुकेश किशोर कुमार, दलित महमूद और हेमंत कुमार अरूज पर थे। 6 साल की उम्र से ही उनमें गाने की सलाहियतें नमूदार हुईं। तरबियत हासिल करने के लिए आपने लाहौर का रुख किया। लाहौर में आपने अपनी तरबियत बड़े गुलाम अली खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और अब्दुल वहीद खान साहब से हासिल की। लाहौर में ही 16 साल की उम्र में आपने संगीतकार श्याम सुंदर की पंजाबी फिल्म गुल बलोच में बहसती गुलूकार मंजर आम पे आई।

बॉम्बे फिल्म नगरी के एक निर्माता नजीर ने सन 1944 में उनकी आवाज सुनी और फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब को गाने की दावत दी। उसके बाद मौसीकार नौशाद अली ने फिल्म पहले आप में आपको एक कोरस में

1947 में फिरोज निजामी ने फिल्म जिगनू में मलिके तरन्नुम नूर जहां के साथ आपको गाने का मौका फराहम किया। उसके बाद ये गुलोकार पीछे न देखते हुए आगे की तरफ बढ़ता गया, कहता गया, मैं कहां रुकता हूं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत आगे।

0: 1948 में फिल्म प्यार की जीत का यह गीत एक दिल के टुकड़े हजार हुए मकबूल हुआ। फिल्म बड़ी बहन का गीत मोहब्बत के धोखे में कोई न आए मौसिकी के शायकीन महफिल की जीनत बनता गया।
1: फलक से तोड़ कर देखो

इसके बाद मोहम्मद रफी के पास फिल्मों की एक लंबी कतार लगी। जैसे मेला, शहीद, सगाई, दुलारी, दीदार, दिल लगी और बरसात, ये सिलसिला सन 1950 तक जारी रहा।

सन 1953 में जब फिल्म बेजू बावरा रिलीज हुई तो रफी की गाय हुई दो भजनों ने कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया। इस तरह से यह बात सिद्ध हुई कि रफी साहब जात पात मजहब और मिल्लत की बंदिशों से ऊपर उठकर फन मौसीकी की खिदमत

0: शास्त्रीय संगीत में आपका एक मुनफरिद मुकाम था। सन 1950 से सन 1960 तक आपका दौर गायकी की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह रहा।
1: रफी साहब के साथ बहुत सारी यादें होंगी जो आप हमारे सुनने वालों तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाना चाहेंगे।
2: हाँ भाई, रफी साहब मेरे भाई की तरह थे, बड़े अच्छे दोस्त भी थे, मेरे आइडियल भी थे। वो न सिर्फ बड़े अच्छे कलाकार थे, बहुत सुरीले गायक थे, बल्कि बड़े ही खूबसूरत इंसान थे। उनका दिल बिल्कुल इतना मोम की तरह था, कभी वो नाराज होते हुए मैंने नहीं देखा। इतने बरसों से साथ रहा
1: जी।
2: कई प्रोग्राम उनके मैंने कंपेयर किए, कई बार बातचीत के लिए गया, मिलने गया, कभी मैंने उनको नाराज होते हुए नहीं देखा। हमेशा बड़ी इंकसारी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ वो सबसे मिलते रहते थे, और बड़े पाक इंसान थे। न सिगरेट, न शराब, न कहीं उल्टा सीधा बोलना, कुछ नहीं। हमेशा शराफत और इज्जत के साथ वो बात करते थे लोगों से, और बड़ी नरमी से बात करते थे, हमेशा मुस्कुरा कर बात करते थे। इसलिए वो हमेशा लोगों के दिलों में बस जाते थे। आवाज के बारे में क्या कहें, वो तो थे ही बहुत ही सुरीले और बहुत जबरदस्त गायक। हर तरह का गाना बड़ी अच्छी तरह निभा लेते थे, और मैंने इत्तेफाक से कई ऐसे शोज भी कंपेयर किए जिसमें और भी कई लोग साथ में गा रहे होते उनके, यानी किशोर या मुकेश या लता और आशा वगैरह सब कई साथ मिलकर भी कई शोज होते थे। तो फिर भी मैं देखता था कि सुरीले सभी होते थे, मन्ना डे भी, लेकिन रफी की जो पॉपुलैरिटी थी वो कुछ और ही थी। तो वो जब गाना शुरू करते थे झूम कर, तो जब सब बच्चे सब खड़े होकर झूमने लगते थे। एक बात और थी कि जब भी वो जाते थे किसी शो में, तो बड़े साहब वो इंसाफ पसंद थे। मतलब ये कि वो हमेशा कहते थे, मुझे जिस क्लास में प्लेन में तुम ले जाते हो या ट्रेन में ले जाते हो, उसी क्लास में तुम मेरे सारे यूनिट को ले जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे फर्स्ट क्लास में रखो, बाकी को सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में रखो। होटल में भी वो कहते थे, जिस होटल में मैं रहूंगा उसी होटल में सबको रखिए। यूनिट उनके साथ काम करने वालों का वो भी उन पर फिदा था और बहुत इज्जत करता था उनकी।
1: अमीन साहब, कोई ऐसा इंसिडेंट जो बिल्कुल आपके दिल के करीब है रफी साहब के साथ?
2: इंसिडेंट ऐसा रफी के साथ एक ही बड़ा अजीब सा इंसिडेंट रहा, या यूं कहिए कि नहीं रहा, वो ये था। तो मैंने करीब करीब सभी लोगों को इंटरव्यू किया, एक दो तीन लोग बड़े जो मेरे करीब थे वही रह गए, उनमें से एक थे रफी। अब रफी क्यों रह गए कि मैं कई बार उनके पास जाता था कि रफी भाई मेरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इसमें बोलें, तो कहते नहीं यार वो क्या है कि मैं तो गाने वाला हूँ, क्यों बुलवाते हो मुझसे काम खा, तुम एक काम करो
1: जी।
2: जब मैंने बहुत जिद की तो कह रहे तुम एक काम करो, तुम कोई ऐसा प्रोग्राम करो जिसमें मुझे बोलना ही ना पड़े। तो मैं उलझन में पड़ गया कि यार ये कैसी बात है। तो खैर वह सोचता रहा, तो इसमें कई बरस बीत गए, और फिर मैंने कोशिश की कि कहीं अगर मेरे पास मेरे लिए नहीं बोलते तो किसी और के लिए बोला होगा। तो सारी दुनिया से मेरे दोस्त बहुत हैं ब्रॉडकास्टर्स, कई सारी दुनिया में फैले हुए, तो मैंने कोशिश की कि रफी का कोई इंटरव्यू मेरे हाथ लग जाए
1: जी।
2: तो कई लोगों ने इंटरव्यू भेजे रफी के, लेकिन उसमें यही था कि वो हाँ हूँ, बहुत अच्छा, हाँ मजा आया, बस इतना बोलकर वो रुक जाते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। बस ज्यादा से ज्यादा एक 25 सेकंड या 20 सेकंड के जुमले मुझे मिल जाते थे, तो एक दो मैंने बजाए लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो आखिरकार मैं उनके पास गया एक रोज, रफी भाई ये आपने उलझन में डाल दिया, अब कैसे करें आपको इंटरव्यू। कहने की सीधी बात है, तुम ऐसा सवाल करो जिसका जवाब मैं गाकर दे दूंगा
1: जी।
2: मैंने कहा चलो डन हो जाएगा, और मैं लग गया घर आकर उसके बाद उस टाइप का इंटरव्यू प्लान करने में। लेकिन तब तक बहुत बरस बीत चुके थे, उनकी तकदीर ने मुंह फेर लिया और वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो उन्हें कभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इत्तेफाक से एक हुआ ये था कि एक बार मैं दादा बर्मन की मौत पर तमाम बड़े बड़े संगीत सितारों का इंटरव्यू ले रहा था गीतमाला के लिए, तो सबको रिकॉर्ड किया। रफी साहब को रिकॉर्ड करने मैं गया, लेकिन रिकॉर्डिंग जो हुई उन्होंने स्टूडियो से बाहर आकर की ओपन एयर में। एक तो कुछ बोले नहीं ज्यादा, दूसरे वो कुछ वहां कुत्तों की आवाज आ रही थी भौंकना, और कुछ कौओं की आवाजें आ रही थी, तो मैंने उसको इंटरव्यू थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, वो क्रैप कर दिया और नहीं बजाया।
1: जी
2: मगर उन्हीं दिनों मेरे भाई साहब का, हमीद भाई का इंतकाल हुआ था, तो मैं ज्यादा अटेंड नहीं करवा रहा था। रफी साहब का ये प्रोग्राम बाकी लोगों की आवाजें भर के मैंने रिकॉर्डिस्ट को दे दिया कि चलो इसको मिक्स करके तुम भेज देना रेडियो से लाओ। तो हुआ ये था, जिसका बाद में मुझे पता चला कि मेरे राइटर जो थे रियाज सैयद साहब, बहुत अच्छे काबिल राइटर थे, तो मेरी गैर मौजूदगी में वो गए रफी साहब के घर और कहने लगे साहब अमीन साहब तो आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैं गुजारिश करता हूँ थोड़े कुछ जुमले बोल दें आप दादा बर्मन के बारे में, तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका।
1: जी
2: तो उन्होंने एक छोटा सा इंटरव्यू दिया और वो रियाज साहब वापस लाकर मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने रिकॉर्डिस्ट को भी दिया, और वो इंटरव्यू उनका ट्रिब्यूट टू बर्मन दादा वो ब्रॉडकास्ट हुआ, जो मुझे जिसका पता ही नहीं चला कई वर्षों बाद तक। तो ये वही है मेरे मेरी अपनी रिकॉर्डिंग में, बस वही एक चीज मेरे पास है रफी की कही हुई। बर्मन दादा और जय किशन और मदन मोहन जैसे लोग इस दुनिया से जाते रहे तो हमारा संगीत तो सुना हो जाएगा। बड़ा अच्छा उन्होंने कहा
1: जी
2: था।
1: अमीन साहब, रफी साहब का कोई ऐसा गाना जो रफी साहब के दिल के बिल्कुल करीब था?
2: भाई एक गाना है, वैसे तो उनके कई गाने मुझे बहुत पसंद हैं, मसलन गाइड की बहुत गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, लेकिन एक गाना जो उनके दिल के भी करीब हो और मेरे दिल के भी करीब उनकी याद आते आते हुए, वो गाना है रोशन साहब के म्यूजिक में फिल्म चित्रलेखा का,
1: जी
2: कि मन रे तू काहे न धीर धरे, और एक एक जुमला उसमें बड़ा अच्छा था, एक एक एक पंक्ति एक मिसरा साहर ने लिखा था कि कोई न संग मरे। तो ये हमें हमेशा इत्मीनान दिलाता है कि भाई मौत तो आनी है सबके लिए, लेकिन कुछ ऐसा कर जाओ जिंदगी में कि मौत के बाद भी हमारी याद जिंदा रहे, और यही बात रफी साहब ने कायम रखी अपने जाने के बाद भी। आज भी उनके गीत बजते हैं और हम उन्हें सुनते हैं और खुश होते हैं और अपने जीवन में रस घोलते हैं, और वो सुकून आता है उनकी आवाज से कि हाँ भाई एक इंसान था जो नेक भी था, शरीफ भी था और सुरीला भी था, और हमारे दिल में आज तक बसा रहा है और हमेशा बसा रहेगा।
0: रफी साहब ने लगभग हर संगीतकार के साथ काम किया। अनिल बिस्वास, श्याम सुंदर से लेकर हुसन लाल भगतराम, नौशाद से लेकर एस डी बर्मन, मदन मोहन से लेकर ओ पी नैयर, शंकर जयकिशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, रवि से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन से लेकर बप्पी लहरी तक,

कुछ गीत रफी ने इस तरह से गाए जिनमें उम्र की कोई बंदिश नहीं थी। जैसे तस्वीर बनाता हूं फिल्म दीवाना से। बड़ी देर भाई फिल्म बसंत बहार से, ऐसे तो न देखो फिल्म तीन देवियां से, सुहानी रात ढल चुकी फिल्म दुलारी से, मन मोरा बावरा फिल्म रागनी से, न किसी की आंख का नूर हूं फिल्म लाल किला से, जो बात तुझ में है फिल्म ताजमहल से, रोशन तुम्ही से दुनिया फिल्म पारसमनी से, फिर वो भूली सी याद फिल्म बेगाना से।

रफी साहब में एक खास बात यह भी थी कि वो अपनी आवाज को किसी भी सांचे में डालने की, किसी भी रस में पेश करने की सलाहियत रखते थे। खाओ शहनशाही जज्बात दिलीप कुमार हो या मस्ताना देव आनंद, उछलता कूदता शम्मी कपूर हो या पारंपरिक भक्ति रस में डूबा हुआ भारत भूषण, हास्य रस में नहाया हुआ जॉनी वॉकर या महमूद हो, गरज यह है कि रफी ये तमाम सलाहियतें रखता था।

ये सही है कि मोहम्मद रफी आज नहीं है, लेकिन उसकी आवाज आज भी कई संगीत प्रेमियों की जीने का सहारा बन चुकी है। कई नए कलाकारों के लिए मशले राह साबित हुए हैं और उन्होंने रफी साहब के अंदाज को अपना कर अपना लक्ष्य तय किया है।

0: सन 1971 में रफी साहब गायकी की दुनिया में सरफिरिस्त रहे और इसी साल आप हज पर चले गए।
1: खुदा अपने बलियों से होता है राजी।
0: हज के फराइज अंजाम देने के बाद मौसीकी की दुनिया को अलविदा किया और आप अपने फर्जंद के साथ लंदन में कयाम करने लगे। इस फनकार की गैर हाजिरी को सामीन ने बर्दाश्त नहीं किया और रफी को गायकी की दुनिया में वापस लाने में कामयाबी हासिल।

मोहम्मद रफी ने चंद एक ममालिक को छोड़ सारी दुनिया का दौरा किया। रफी न सिर्फ एक महान गायक कलाकार ही थे बल्कि अजीम शान शख्सियत के मालिक भी थे। वो सादा नरम तबीयत और खुदा का खौफ रखने वाले इंसान थे। वो

रफी साहब ने 36 सालों में तकरीबन 26,000 मुख्तलिफ हिंदुस्तानी भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। आपको 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और आपने पद्मश्री एजाज भी हासिल किया।

महफिल चाहे तंज मिजाह की हो या दर्द वालम की, चाहे इश्क आशिकी या सूफियाना महफिल, रफी साहब हर महफिल को अपनी मधुर आवाज से सरशार करते रहे। रफी साहब जैसे कलाकार एक ही बार हयात पाते हैं।

0: रफी ने अपने जमाने के लगभग सभी को सिंगर्स के साथ काम किया। लता मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शमशाद बेगम, सुरैया, मीनू परशोत्तम और सुलक्षणा पंडित।
1: तुम अकेले तो कभी बाग में जाए।
0: और ये सभी गाने मकबूल भी।

0: सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं ठाकुर वर्मा।
1: और मैं हूं विकास शर्मा।
0: आज हम एक गाना सजना रिलीज कर रहे हैं रेड प्रो एंटरटेनमेंट की ओर से, जिसको अपने सुरों से सजाया है विपन कुमार ने,
1: संगीत से सजाया है रिएक्स ने,
0: निर्माता है विकास शर्मा
1: और निर्देशित किया है ठाकुर वर्मा ने।
0: ये गीत हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अमूल्य है। प्रस्तुत है ये गीत सजना।
2: Your ex.

मेरी राम राम, जहां दूध दही का खाना यो मेरा हरियाणा, जहां जामदे न्याणे नु सिखैदे गाना बजाना यो मेरा हरियाणा, जहां जोड़ा के ऊपर बैठ कर नहाना यो मेरा हरियाणा, जहां अंडिया मा दाल पकाना यो मेरा हरियाणा। तो इसे हरियाणा के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच में, अर्थम जान सकांगे मारे हरियाणे के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो हर शनिवार और रविवार सबेरी 7:05 पा और दोपहर 2:00 सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

90.0 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।
1: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: चार पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब होगा तेरा।

हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

0: घी दालच महल, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज ये किडनी बातचीत करेंगे आज के आमंत्रित मेहमान श्रीमती नीरजा बख्शी के साथ। रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपुरी ने, सहयोग कृष्णा का।

0: स्क्रिप्ट एवं निर्देशन आरजे किरनी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 एफएम और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात होती है रिश्तों की, एहसासात की और उन अनमोल बंधनों की जो हमारी जिंदगी को मायने देते हैं। कहते हैं घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर बनता है प्यार से, अपनापन से और रिश्तों की गर्माहट से। और आज का हमारा विषय है बहनों का प्यारा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती भी है, ममता भी है और सुकून भी। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि कई खूबसूरत रिश्तों की पहचान है। एक समर्पित होममेकर, एक स्नेहमय माँ और एक संवेदनशील बहन। घर की जिम्मेदारियों को मुस्कुराकर निभाना, बच्चों के लिए छांव बन जाना और रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना, ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता। लेकिन जो आज हमारी गेस्ट है उनके पास ये सारे हुनर है। इन सभी भूमिकाओं को उसने सिर्फ निभाया नहीं बल्कि खूबसूरती से जिया है। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम घर परिवार में।
2: रेडियो वितस्ता के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीरजा बख्शी, मैं जम्मू से हूँ। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है और जम्मू यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है।
1: आपका हमारे घर परिवार कार्यक्रम में दिल से स्वागत है। बहनों के इस खास विषय पर आपके अनुभव और आपके एहसास सुनने के लिए हम सब बेहद उत्सुक हैं। घर की दीवारों में जो खुशबू ठहर जाती है वो अक्सर किसी औरत की ममता कहलाती है। रिश्तों को जो चुपचाप सींचती रहती है वही घर की असली ताकत बन जाती है। निर्जा जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अक्सर कहा जाता है कि बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती है, आपके हिसाब से इस बात का असली मतलब क्या है? क्या सच में बहनों के बीच एक ऐसा एहसास और जुड़ाव होता है जो शब्दों से परे होता है?
2: जी हाँ किरनी जी, वाकई में बहनें एक दूसरे की रूह का हिस्सा होती हैं। वो न सिर्फ साथ में खेलती कूदती हैं, बल्कि वो साथ में खाती पीती हैं, उठती बैठती हैं, हर छोटा बड़ा काम भी करती हैं। इसके अलावा वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती भी हैं, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा होता है, उनकी आपस की लड़ाई उनको याद नहीं रहती और ना ही उनको एक दूसरे के खिलौने छीनने से फर्क पड़ता है। ये ऐसा प्यार है जो बिना किसी मतलब के एक दूसरे से किया जाता है। ये ऐसा प्यार होता है जहाँ माँ की डांट से एक दूसरे को बचाया भी जाता है।
1: निर्जा जी, आपने सही कहा, बहन का रिश्ता शब्दों से नहीं एहसासों से समझा जाता है, शायद इसलिए ये रूह से जुड़ा हुआ लगता है। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, बचपन में बहन का साथ हमारे स्वभाव, आदतों और सोच को किस तरह आकार देता है? क्या वही बचपन की यादें आज भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत नींव बनी हुई है?
2: बचपन में बहन ही सबसे ज्यादा करीब होती है, उसी के साथ खिलौने, कपड़े, जगह सब कुछ शेयर होता है और वही छोटी छोटी लड़ाइयों की वजह बनती है, पर ये लड़ाइयाँ कभी दूर नहीं करती।
1: आपने सही कहा, बचपन की वही छोटी छोटी बातें बड़े होकर भी रिश्ते को सबसे मजबूत डोर बन जाती है। अब आपसे मेरा अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं कि बहन का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा होता है, आपके अनुसार इस रिश्ते की वो कौन सी बात है जो इसे हर रिश्ते से अलग और खास बनाती है?
2: किरनी जी, आप जानती हैं, दोस्त हम जिंदगी में बाद में बनाते हैं, पर बहन बचपन से साथ होती है। दोस्त को हम अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन बहन पहले से ही उस कहानी का हिस्सा होती है। दोस्त कभी कभी समझता है, पर बहन बिना समझाए सब कुछ समझ जाती है। दोनों खास होते हैं, लेकिन बहन का रिश्ता ज्यादा गहरा और पुराना होता है।
1: सच कहा, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन बहन का रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और गहरा होता है। दोनों रिश्ते हमारी जिंदगी में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपसे मेरा अगला प्रश्न है, जिंदगी की मुश्किल घड़ियों, उलझनों और चुनौतियों में बहन की मौजूदगी क्या मायने रखती है? क्या वो सचमुच में एक ऐसे सहारे की तरह होती है जो बिना कहे समझ ले?
2: आप जानती हैं, जिंदगी में हर इंसान को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बात बता सके, जिसके साथ वो अपनी सीक्रेट शेयर कर सके और जिस पर वो भरोसा कर सके। इसी तरह बहन के साथ सीक्रेट शेयर करना भरोसे को मजबूत करता है। जब आप अपनी बात बिना डर के कह सकते हैं, रिश्ता गहरा होता है। ये सीक्रेट्स सिर्फ बातें नहीं, एक दूसरे का भरोसा होती हैं। इसी भरोसे से बहन का रिश्ता मजबूत होता है। अब बात है मुश्किलों की। जब दुनिया समझ नहीं पाती, बहन बिना समझाए समझ लेती है। वो बस पास बैठकर भी हिम्मत देती है, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ अपनी मौजूदगी से। मुश्किल वक्त में बहन सबसे बड़ा सहारा बनती है।
1: आपने सही कहा, मुश्किल वक्त में बहन का साथ सच में एक हिम्मत जैसा होता है जो संभाल भी लेता है और समझ भी लेता है। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बड़ी बहन बहुत केयरिंग होने के साथ साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि सख्ती के पीछे भी छुपा हुआ गहरा प्यार और जिम्मेदारी होती है?
2: जी हाँ, असल में बात यह है कि स्ट्रिक्टनेस और प्यार, ये दो चीजें अलग है। स्ट्रिक्टनेस इंसान को गलतियां करने से बचाती है और प्यार इंसान को एक दूसरे पर भरोसा करवाती है। बड़ी बहन शायद स्ट्रिक्ट इसलिए होती है क्योंकि उसको घर में जिम्मेदारी का एहसास बचपन में ही पैदा हुआ होता है। वो माँ की तरह हर बात पर नजर रखती है, पर बहन की तरह प्यार भी करती है। उसकी डांट में सख्ती कम, चिंता ज्यादा होती है। बड़ी बहन घर की वो छाया होती है जो बिना कहे सब संभालते रहना चाहती है। कभी टीचर बन जाती है, कभी दोस्त और कभी माँ का रूप ले लेती है। केयरिंग होना उसके दिल की नरमी का एहसास है और स्ट्रिक होना उसकी फिक्र का तरीका है।
1: आपने बहुत सही कहा, बड़ी बहन की सख्ती में भी एक अजीब सी मिठास होती है क्योंकि उसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है। नीरजा जी, बहुत प्यार भरी बातें हुई, क्या आप संगीत सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं संगीत सुनती हूँ और संगीत से ही तो रूह को सुकून मिलता है।
1: तो फिर चलिए, आप अपना पसंदीदा गीत बताइए।
2: मेरा पसंदीदा गीत है अपने तो अपने ही होते हैं।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपका पसंदीदा गीत, आपको और अपने श्रोताओं को।

0: आपसे मेरा एक और प्रश्न है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी बहन बड़ी बहन की बात मानती है, उस पर भरोसा करती है और उसे एक मिसाल की तरह देखती है। इस आज्ञाकारिता के पीछे कौन सा भाव काम करता है?
1: किरणी जी, अक्सर देखा जाता है छोटी बहन शुरू से ही, बचपन से ही माँ के बाद अपनी बड़ी बहन को देखती है। वो हर काम अपनी बहन की निगरानी में करती है, हर छोटी बड़ी जिद अपनी बहन के सामने पूरी करती है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बहन कभी उसके लिए गलत नहीं सोचेगी, कभी उसके लिए गलत नहीं करेगी और ना ही कभी उसको गलत रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि छोटी बहन अक्सर आज्ञाकारी होती है। बचपन से ही बड़ी बहन को एक मार्गदर्शक की तरह देखती है। उससे लगता है कि वे कह रही है तो यही सच है और उसमें ही उसकी भलाई है। छोटी बहन बहस भी इसीलिए कम करती है क्योंकि उसके दिल में अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा भरोसा होता है। इसीलिए उसका आज्ञाकारी होना, बहन के लिए दिल में इज्जत होना और बहन पर विश्वास होना स्वाभाविक है।
0: आपने सही कहा, क्योंकि छोटी बहन का विश्वास ही इस रिश्ते को और खूबसूरत बना देता है। अब आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है, कई बार ऐसा महसूस होता है कि बड़ी बहन बहन कम और माँ ज्यादा लगती है, किन बातों में वो माँ जैसी भूमिका निभाती हुई नजर आती है?
1: किरणी जी, आप जानती हैं, बच्चा जब छोटा होता है उसको सही गलत का अंदाजा नहीं होता और माँ अपने दूसरे कामों में व्यस्त होती है और बड़ी बहन अपना हक और अपना फर्ज बखूबी निभाती है। यही वजह है जब बड़ी बहन अपने छोटों को उनकी गलती बताती है और उनको गलत रास्ते पर चलने से रोकती है, तब बड़ी बहन में माँ की झलक दिखाई देती है। वो अगर डांटती भी है लेकिन वो साथ में संभालती भी है। वो अगर उसको कुछ गलत करते देखती है, वो उसको बिल्कुल उससे बताए बिना ही उसको उस गलती से दूर कर देती है। माँ की तरह जब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन का ख्याल रखती है तो उसे लगता है कि शायद मेरी माँ भी इतने अच्छे से मुझे नहीं संभाल पाती। जब माँ पास ना हो तो बड़ी बहन ही संभालती है और जरूरत पड़ने पर माँ का रूप ले लेती है। बिना कहे और बिना दिखाए वो एक माँ ही बन जाती है।
0: आपने बहुत सही कहा कि कई बार सच में ऐसा लगता है कि बहन बहन कम और माँ ज्यादा होती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि आज के बदलते दौर, दूरियों और व्यस्त जीवन शैली के बीच भी बहनों का रिश्ता किस रूप में बना हुआ है? क्या आज भी वही अपनापन, वही जुड़ाव महसूस होता है?
1: आज के दौर में जिंदगी पहले से काफी तेज हो गई है। सब अपनी जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, फिर भी बहनों का रिश्ता वक्त की कमी से कमजोर नहीं पड़ता। रोज बात ना हो तो भी एक छोटा सा मैसेज और कॉल दिल को सुकून दे देता है। आजकल बहनें एक दूसरे की इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन गई हैं। दूर रहकर भी पास महसूस करना, यही आज के दौर की बहनों के रिश्ते की खूबसूरती है।
0: आपने सही कहा कि दूरी चाहे कितनी भी हो जाए, बहनों के बीच की नजदीकियां कभी कम नहीं होती है, क्योंकि आज के बदलते दौर में एक फोन कॉल से हमें लगता है कि हम एक दूसरे के आसपास हैं।
1: किरणी जी, मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं, क्या मैं आपके लिए वो पंक्तियां बता सकती हूँ?
0: जी हाँ, क्यों नहीं।
1: मेरी पंक्तियां इस तरह हैं, किताबों के पन्नों से पाक है फितरत उसकी, हर लफ्ज में बहती है सिर्फ मोहब्बत उसकी। किरणी की लेखनी में दिखता है बहनों का दुलार, सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार। सदा सलामत रहे मेरी बहन और उसका ये निस्वार्थ प्यार।
0: बहुत बढ़िया, आपने मेरे लिए भी शायरी बोली है। ये खाली शायरी नहीं है बल्कि तेरे लफ्जों में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। तेरी अल्फाज सिर्फ शायरी नहीं, मेरे लिए वो बचपन की यादें भी है। तू शायरी सुनाए और मैं चुप रहूं, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी आवाज का हिस्सा है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। शायरी तो बहाना है, असल में तो मुझे रुलाना चाहती है। तेरे लफ्ज का असर देखो, दिल को सीधा बचपन में ले जाती है।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का घर परिवार कार्यक्रम जारी है। अब हम इसके अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं। मिर्जा जी, अभी आपने जो शायरी बोली, आपने मुझे बहुत ज्यादा भावुक कर लिया। चलिए अब आगे। मिर्जा जी, घर संभालते हुए हर रोज ये सोचना पड़ता है कि परिवार को कुछ ऐसा खिलाया जाए जो सेहतमंद भी हो, टेस्टी भी हो और ज्यादा वक्त भी ना ले। ऐसा कौन सी रेसिपी है जो आप अक्सर बनाती है, जो झटपट तैयार होती है और पौष्टिक भी होती है?
1: मैं अक्सर वेजिटेबल ओट्स चिल्ला बनाती हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है और बनाने में भी आसान है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ओट्स, ओट्स का पाउडर, 2 चम्मच बेसन, 2 से 3 चम्मच दही, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और हरा धनिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक चाहिए, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अदरक। थोड़ा पानी डाल के इसका गोला बनाना है, फिर सब चीजों को मिलाकर डोसा जैसा गोला बना लेना है। गर्म तवे पर हल्का सा तेल लगाकर इस गोले को फैला देना है। दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक सेक लेना है। इसे दही या हरी चटनी के साथ गरम गरम खाने का स्वाद कुछ अलग ही आता है।
0: बहुत बढ़िया है ये रेसिपी। वाकई एक तो हेल्दी भी है और झटपट बनने वाली भी। आगे नीरजा जी, बदलते मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी और सोर थ्रोट की परेशानी हो जाती है। घर संभालते हुए आप जरूर कोई ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाती होंगी जो आसान भी हो और असरदार भी। हमारे श्रोताओं के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएंगी जो तुरंत राहत दे सके?
1: मैं अक्सर हल्दी और शहद का नुस्खा इस्तेमाल करती हूँ, जो सर्दी, खांसी और गले की खराश में काफी राहत देता है। इसको बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद चाहिए और 1/4 चम्मच हल्दी चाहिए। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर दिन में 2-3 बार धीरे धीरे चाट लीजिए।
0: बहुत बढ़िया। वैसे भी हल्दी में सूजन कम करने की ताकत होती है और शहद गले को नरम करती है। ये नुस्खा इम्यूनिटी बढ़ाता है और सोर थ्रोट में भी जल्दी सुकून देता है। आखिर में मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको बहन शब्द को एक खूबसूरत एहसास, एक परिभाषा या एक रूपक में डालना हो तो आप उसे किस तरह बयान करेंगी?
1: किरणी जी, मैं बहन को एक ऐसे एहसास के रूप में बयान करूंगी जो जिंदगी भर साथ चलता है। बहन वो होती है जो बचपन से आज तक आपके हर रूप को जानती है। वो डांट भी सकती है, हंसा भी सकती है और जरूरत पड़ने पर संभाल भी लेती है। पास हो या दूर, उसका प्यार हमेशा दिल के करीब रहता है। किरणी जी, मैं इसी एहसास को कुछ पंक्तियों के रूप में बयान करना चाहती हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आगे बढ़ूं?
0: जरूर जरूर, आप अपनी पंक्तियाँ हमें और हमारी श्रोताओं को सुनाइए।
1: रिश्तों की भीड़ में सबसे प्यारा नाम है बहन। घर की रौनक, घर का सुकून, घर की शान है बहन। मुश्किल में जो सबसे पहले साथ खड़ी मिलती है, हर दर्द की पहली पहचान है बहन।
0: बहुत ही अच्छी लाइनें, एक तो हार्ट टचिंग है और बहुत ही सुकून देने वाली लाइनें हैं।
1: किरणी जी, मैंने आपके बहुत से सवालों का जवाब दिया। मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकती हूँ?
0: जरूर, आप अपना सवाल पूछिए।
1: किरणी जी, जिस तरह मुझे सारी उम्र अपनी बहन की एक याद मेरे दिल दिमाग में रही, क्या कोई ऐसी याद है जो आपके दिल दिमाग में भी है?
0: जी हाँ, एक ऐसी याद है जो मैं हमेशा याद करती हूँ। क्यों? कारण उसका ये भी है, क्योंकि जो मेरी बहन है वो मेरे से छोटी है, मगर छोटी होते हुए भी उसने एक बार, मतलब एक बार के कई बार, मेरा जो ध्यान रखा, जो मेरा ख्याल रखा एक बड़ी बहन की तरह। एक बार का मुझे वाकई याद है कि मैं काफी बीमार हो गई, मुझे फीवर था, तो क्योंकि हम कश्मीर में रहते थे, वहां सर्दी बहुत थी, तो वहां ठंडा पानी तो पी नहीं सकते थे, तो उन दिनों हमारे घर में गैस नहीं थी, वो रात के 1 बजे 2 बजे उठती थी, वो चूल्हे पर गर्म पानी करती थी मेरे लिए, मुझे चाय पीनी होती थी, वो पूरी पूरी रात मेरे लिए जागती थी। वो कम से कम 4-5 दिन का समय हुआ गया जब तक मैं ठीक हो गई, वो रात को नहीं सोती थी, वो हमेशा जब तक मैं ना सोती थी वो सोती नहीं थी। और ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि कभी कभी वो छोटी होकर भी मेरी बड़ी बहन बन जाती है, और ये याद हमेशा मुझे याद आती है। जब भी मैं बीमार होती हूँ मुझे वो चीज याद आती है, वो मेरा कितना केयर करती थी। और मैं चाहती हूँ कि बहनों का प्यार ऐसा ही बना रहे और हमेशा एक मिसाल बने कि बहनें ऐसी होती है।
1: तुमने ये किस्सा सुनाकर मेरा दिल भर दिया। सच तो ये है कि तुम्हारा मेरे लिए लगाव तब भी वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पर क्या तुम्हें पता है, मेरे पास भी एक ऐसी याद है जिसने मुझे हमेशा ये एहसास दिलाया कि मेरी बहन मेरे लिए क्या मायने रखती है। मेरी बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं रहा। जब मैं कॉलेज की जल्दी में खुद का ख्याल रखना भूल जाती थी, वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती थी। वे मेरे हाथ में खाना पकड़ाकर मेरे बाल बनाना लगती। उनका वो प्यार भरा रवैया और ये जिद के भूखे पेट नहीं जाना आज भी मेरे दिल का करीब है। वो सिर्फ मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे बचपन की सबसे मजबूत डाल थी। किरणी जी, मैंने कुछ ऐसी लाइनें उनके बारे में लिखी हैं, मैं थोड़ा वो बताना चाहती हूँ। वो बचपन की फिक्र, वो बहन का दुलार, मैं भूल जाती थी खुद को पर उन्हें था याद हर बार। न जाने दिया कभी भूखे पेट मुझे दहलीज के पार, कभी कंघी से बाल सवारे तो कभी निवालों से ढेर सारा प्यार।
0: आज हमारी जो गेस्ट थी, आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने बहनों के प्यार के ऊपर इतने अच्छे अच्छे हमें उत्तर दे दिए। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का समय खत्म होता है। श्रोताओं, आज की इस प्यारी सी बातचीत में हमने जाना कि बहन का रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी का एक सुकून है, एक ऐसा साथ जो वक्त दूरी और हालात से परे होता है। बहन वो होती है जो हमारी मुस्कान के पीछे छुपा दर्द भी पढ़ लेती है और हमारी खामोशी में छुपे सवाल भी सुन लेती है। रिश्तों की भीड़ में जो सबसे खास होता है वो बहन का प्यार ही तो होता है, जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वो बस दिल में महसूस होता है। सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहती हूँ, आज अगर आपकी भी कोई बहन है पास या दूर, तो इस कार्यक्रम के बाद उसे एक बार जरूर याद कीजिएगा, उसको फोन कीजिए, क्योंकि बहनें जिंदगी में बार बार नहीं मिलती, वह किस्मत से मिलती है। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं किरणी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।
1: मुझे भी इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 7। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रीमती नीरजा बख्शी। कार्यक्रम रिकॉर्ड एवं एडिट किया भारत सोपोरी ने, सहयोग कृष्णा का, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
2: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
3: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विस्ता हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो विदस्ता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज से रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: सीधी कर दिया मेरे ते जो सर्दियां ते नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा मेनू 90.0 मेगा

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: फिफ्टी, कुछ तेरे दिल में फिफ्टी, कुछ मेरे दिल में फिफ्टी, जमाना है पूरा।
1: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विविधता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखाओ।

चम्मी ने हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शमी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शम्मी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शम्मी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: आवाज उन पर सटीक बैठती थी। अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफीक गीतू ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
1: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 8। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है रात। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, कार्यक्रम के लेखक, प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक आरजे किरने।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और लेकर आई हूं रेट्रो हिट्स का एक और अंक, रात स्पेशल। रात, वो पल जब चांद के संग जज्बात भी जागते हैं। रात का सुकून, चांदनी की बातें और खामोशी के जज्बात का अपना ही एक एहसास होता है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे रात की। ये रात, ये चांदनी फिर कहाँ, सुनो एक कहानी दिले जवां।

रात भर चांद से बातें होती है, जिंदगी के गम चांदनी से धुल जाते हैं। रात की खामोशी में दिल का राज खिलता है और चांदनी की रोशनी में मोहब्बत लिखी जाती है।

रात खामोश है मगर दिल का शोर जागता है। जो बातें दिन के उजाले में छुप जाते हैं। रात के सीने में छुपी है मोहब्बत की कहानी। चांद की रोशनी में लिखा है दिल की प्रेम कहानी।

रात की चादर में गुम होती है यादें और चांद के साये में बिखर जाती है बातें। रात का सुकून है, चांद का नूर है और दिल के अफसाने हैं जो पूरे हैं।

दोस्तों, रात का सुकून और चांदनी की रोशनी हमेशा दिल के जज्बात को जिंदा रखती है। आज के इस सफर को यहीं रोकते हैं, लेकिन अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए जज्बात और नए गीतों के साथ। तब तक रात की खामोशी और रेट्रो गीतों का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 8। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था रात। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, कार्यक्रम को लिखा, प्रस्तुत किया और निर्देशन दिया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: एक महल हो

حسن کی ہو مثال، ہو پونم کا چاند، زندگیوں کی ہو سحر، ہو ڈھلتی شا

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

भी अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने गमों का और

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें हैं शादाब। सन्नाटा पसरा है, गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं। तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं। यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

जय श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं और अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं। हम कोशिश करते हैं बात वो करें जो रखे आपसे सरोकार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही, और स्टूडियो की घड़ी में इस समय समय है 9:01। श्रोताओं, समय हो चला है अब आज के खूबसूरत सफर को यहीं थामने का। सुबह से लेकर अब तक सुरों, यादों और बातों का जो कारवां हमने मिलकर सजाया, उम्मीद है उसने आपके दिन को बेहद खास बनाया होगा। अब समय है आज के प्रसारण को यहीं विराम देने का, लेकिन विदा लेने से पहले दिल की गहराइयों से एक पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम और एक खास व्यक्ति के नाम। आज का दिन एक बेहद खास शख्सियत के लिए और भी हसीन है। आज जन्मदिन है गीता शर्मा जी का, जो उगते सूरज की भूमि अरुणाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हैं। गीता जी, आपको टीम रेडियो वितस्ता की ओर से, मेरी ओर से और रेडियो संचालिका कृष्णा की तरफ से और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, और आपके इस दिन को और भी यादगार बनाने के लिए आपके हम सफर, आपके पतिदेव श्री भूपिंदर शर्मा जी, आपकी प्यारी बेटी माही और आपकी आदरणीय सासू मां जी ने आपके लिए ढेर सारा प्यार और दुआएं भेजी हैं। उनकी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। ये रेडियो तरंगों की ओर से हम आप तक यहां से पहुंचा रहे हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। पंक्तियां यूं हैं, अरुणाचल की वादियों सी खूबसूरत आपकी तकदीर हो, अरुणाचल की वादियों सी खूबसूरत आपकी तकदीर हो, हर लम्हे में छुपी खुशियों की नई तस्वीर हो, महकते रहे आप सदा अपनों के प्यार से, महकते रहे आप सदा अपनों के प्यार से, जीवन का हर दिन आपका बस यूं ही खुशनुमा और बेनजीर हो। भगवान आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत और बेहिसाब खुशियां दे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू गीता जी। आइए आप बात करते हैं आज के खास विषय की, जो कल मनाया जाएगा, और वो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। श्रोता को चलते चलते आपको याद दिला दे कि कल 1 जुलाई 2026 है, और कल का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम सब मिलकर मनाएंगे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। ये दिन हमारे लिए और हमारे समाज के उन धरती के भगवानों को समर्पित है, जो 24 घंटे बिना थके हमारी सेहत की रक्षा करते हैं। एक डॉक्टर सिर्फ दवा नहीं देता, बल्कि टूटती हुई सांसों को नई उम्मीद और जिंदगी देता है। कोरोना काल से लेकर आज तक डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए समाज को सुरक्षित रखा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कल के दिन अपने आसपास के डॉक्टरों का आभार व्यक्त करें और उन्हें समाज में वो सम्मान दें जिसके वे